0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Melbourne Museum ki nayi bhavya pradarshini. Rome, Empire, Power, People अब खुल चुकी है ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जाने बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता डाइवर्सिबिलिटीज इसे बदल रहा है एक निःशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं जानकारी कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं इस महीने निःशुल्क जुड़े और $50 का वेस्ट फील्ड वाउचर जीतने का मौका पाए डाइवर्सिबिलिटीज हम सभी के लिए 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी. Color, see the world in a new light. यहाँ देखें चमकते खनिज चिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद रंगों को देखें रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM
5: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है अधिक जानकारी के लिए www.3ZZZindian.org आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से

मित्रों नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को जहां कहीं भी सुन रहे हों, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या विश्व में किसी भी सुदूर देश में, आप सभी को हमारा नमस्कार, हमारा यानी दीप्तिमान और शारदा का। और ये कार्यक्रम है गीतांजलि, जिसको हम लोग लेकर आते हैं हर शनिवार की शाम रात 9 बजे से 10 बजे के बीच। और मित्रों आज का कार्यक्रम 22 अगस्त का एक हमने प्रयास किया है कि इसमें बहुत सारी थीम्स, बहुत सारे भाव और बहुत सारी विशेषताओं को संजोकर एक गुलदस्ते की तरह आपको पेश किया जाए, जिससे आपको तरह तरह के फूलों के रंग और उनकी जो सुगंध है उसकी विविधता को भी सैंपल करने का अवसर मिले। तो मित्रों आज का कार्यक्रम जो जिन थीम्स पर हमने बनाया है, संजोया है, वो हैं हमने हाल ही में बनाया अपना भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का, तो एक थीम तो वो है। दूसरी थीम है भारत हमारा या कोई भी देश क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है, क्या वो जमीन से जुड़ा होता है, अगर हम भारत में हैं तभी हमारा देश प्रेम है, या देश प्रेम एक सर्वत्र भाव है, ये एक थीम ये रहेगी आज की। दूसरी थीम मित्रों 22 अगस्त की डेट, 22 अगस्त की तारीख थोड़ी विशेष है। आज के दिन बहुत सी सारी चीज़ें ऐतिहासिक तौर पे हुई थी, जैसे आपको शायद मालूम होगा कि 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। 22 अगस्त को ही भारत के हिंदी के एक बहुत ही अनन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। तो जो लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं, आपको हरिशंकर परसाई जी का नाम तो आपके जहन में होगा ही, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम आपके सामने लाएंगे। दो चीज़ें मित्रों आज की ये मेन रहेंगी और उसके साथ में गाने तो होंगे ही, गीतांजलि, गीतों की अंजलि, ये हमारा कार्यक्रम है। तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ये जो गाना आपने सुना, ये गाना था बहुत ही अनोखा। ये इस गाने में मित्रों बहुत सारे भाव हैं, देश प्रेम है, बच्चों की आवाज़ है, बच्चे जो कि किसी भी देश का भविष्य होते हैं वो भारत के बारे में बात कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं अपने गुरु से, अपने टीचर से, क्लासरूम का। अगर आपको याद है ये फिल्म थी सन 1959 की, दीदी, दीदी नाम की फिल्म थी ये, और इसमें आवाज़ तो आपने सुनी ही, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, इन दोनों लोगों की इतनी सुंदर आवाज़ थी। और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे दत्ता नायक। तो अगर आपको इस गाने का सीन याद हो तो कक्षा चल रही है, छोटा सा क्लास है, उसमें टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन बच्चों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि हमने सुना था एक है भारत, और उनके प्रश्न बहुत ही इस समय हमारे लिए रेलेवेंट हैं कि हमने सुना था एक है भारत, भारत की एकता, इसके ऊपर छोटे बच्चे, मासूम जिज्ञासु बच्चे अपने टीचर से प्रश्न कर रहे हैं। और जो टीचर हैं उसकी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग है, सुनील दत्त ने एक्टिंग की है, उनका अभिनय बहुत ही अनोखा है। आपको अगर समय मिले तो आप इस फिल्म को अगर मिले तो ज़रूर देखिएगा, फिल्म दीदी 1959 की फिल्म थी, और इसमें मोहम्मद रफ़ी जी ने गाना गाया है, सुनील दत्त जी का अभिनय, हमने सुना था एक है भारत। तो मित्रों बहुत सारी बातें हो गई, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

जी मित्रों, ये गाना आपने सुना, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे फिदा होने की बात है। जिस मिट्टी से, जिस जमीन से हम उपजे हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, वही वतन है, वही देश, वही हमारा गांव, वही शहर, वही मिट्टी हमारी पहचान है। और इतना सुंदर गाना तो मोहम्मद रफ़ी जैसे लोग ही गा सकते हैं मित्रों। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। ये फिल्म थी फूल बने अंगारे, सन 1963 की फिल्म थी, और इसमें संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने, और इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। बहुत ही सुंदर गाना मित्रों। और मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं गुलजार जी की, जो लिखते हैं, एक अकेला हिंदुस्तानी, एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान, दो मिले तो हिंदुस्तान। कितनी बड़ी बात है कि जहाँ हम दो लोग मिल जाते हैं, वहाँ हमारी भावनाएं दो क्या 11 हो जाती हैं, और कभी कभी तो अनंत हो जाती हैं। तो मित्रों, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हों, आप अपने देश की छवि, अपने देश की जो संस्कृति है, हमारी जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, और उसके अलावा जो हमने पाया है अपनी मिट्टी से, जैसे भारत है हमारा देश, वो प्रसिद्ध है मनीषियों के लिए, जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संगीत, साहित्य, इन सब की शिक्षा उन्होंने कितने सुगम ढंग से हमको दी है। और हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम उस देश के निवासी हो गए हैं जहाँ पर यारा बहती है। तो यारों, यारा के नाम पे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जरूर याद रखें। और आप जहाँ कहीं भी हों, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, मार्स पर, मंगल पर एक दिन जाएंगे सब लोग, जहाँ कहीं भी हों, आप अपने देश की खुशबू को अपने दिल में संजो कर रखिए और अपने लबों पर रखिए। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। जी मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे आज की तारीख के बारे में, विशेष तारीख 22 अगस्त। तो मद्रास दिवस, इसके बारे में कुछ बात की जाए। मद्रास, जिसका नया नाम चेन्नई हो गया है, आपको तो मालूम ही है। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मद्रास का जन्म, एक तरह से आप मान लीजिए कि सन 1636 से लेकर 1639, जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का राज्य था, उस समय 1636 के आसपास मद्रास का जन्म हुआ था। तो मद्रास जो है वो जमीन थी कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर, एक सेटलमेंट था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नायक करके, नायक रूलर होते थे उस समय के शासक थे, तो उन्होंने दामरला वेंकटापति नायक, उनसे ये जमीन खरीदी सन 1636 और 39 के आसपास। और दामरला वेंकटापति नायक ने अपने पिताजी के नाम पर उस जमीन को नाम दिया चन्नापट्टनम। उनके पिताजी का नाम चन्ना था, तो उन्होंने इस जमीन का नाम दिया चन्नापट्टनम। तो चन्ना से चेन्नई थोड़ा थोड़ा लिंक बन रहा है। लेकिन अब अंग्रेजों के साइड पर, जहाँ पे ये जमीन थी, उसके आसपास एक मछुआरों का भी गांव था, और उस गांव का नाम था मद्रासपट्टनम। तो उसका नाम फिर अंग्रेजों ने कुछ न कुछ करके मद्रास ही रख दिया, तो इसलिए उस जमीन का नाम पड़ गया मद्रास। लेकिन अभी हाल ही में जब बहुत सारे शहरों के नाम बदल रहे हैं, तो उस क्रम में जो चन्नापट्टनम नाम, जो कि दामरला वेंकटपति नायक ने दिया था सन 1636 में, उस चन्नापट्टनम के नाम को फिर से पुनर्जीवित किया गया और मद्रास का नाम पड़ गया चेन्नई। तो ये है छोटी सी कहानी मद्रास के जन्म के बारे में। 22 अगस्त सन 1636 को मद्रास का जन्म हुआ था। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना इसी क्रम में।

मित्रों, ये गाना जो हमने सुना ये लिया गया था फिल्म एक दूजे के लिए, और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इसमें एस पी बालासुब्रमण्यम की सुमधुर आवाज़ कितनी सुंदर है। और मित्रों, आपको इसमें कुछ कुछ तमिल शब्द आपने ध्यान दिया, इसमें एक शब्द आया था आपड़िया। आपड़िया मतलब होता है, इज इट ओके, अच्छा ऐसी बात है, आपड़िया है ना। और एन्ना, एन्ना मतलब क्या, व्हाट। एक और शब्द आपने सुना होगा सेरी, सेरी मतलब ओके ठीक है। और एक और फ्रेज आया होगा अजागा रोम्बा अजागा इरुक्के, मतलब तुम सुंदर हो। तो देखिए मित्रों, हमारी जो ये रंगोली है हमारी भाषाओं की कितनी सुंदर है, इसमें छोटे छोटे फ्रेजेस, एन्ना व्हाट, सेरी ओके, और आपड़िया मतलब इज इट लाइक दैट, ऐसा है क्या। तो ये अगर छोटे छोटे शब्द अगर हम अपनी वॉकेबलरी में शब्दमाला में ऐड करते जाएं तो हमारी भाषा कितनी सुंदर हो जाएगी। ये है हमारा देश, हमारा देश जहाँ से हम आते हैं, हमारा देश भारत और वतन। और चलिए वतन पर सुनते हैं एक और गाना।

ये गाना ए वतन ये लिया गया था शहीद फिल्म से सन 1965 की, और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी जी की। इसके बोल लिखे गए थे प्रेम धवन जी ने, और उन्होंने इसका संगीत भी दिया था। 1965 की ये फिल्म, मित्रों जब इसका गाना सुनते हैं हम लोग, हमको याद है जब बचपन में जब हम लोग भारत में थे और 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह होती थी प्रभात फेरी,

सुबह के समय वो क्या माहौल था, हम लोग, हमें याद है कि हम लोग खाकी रंग का हाफ पैंट और सफ़ेद रंग की हाफ टी शर्ट वो पहन करके, और सब लोग अपने सफ़ेद जूतों पे, मतलब वो जो सफ़ेद रंग लगा के उसको एक दिन पहले से उसको हम लोग साफ करते थे जूतों को, और उसको चमकाते थे, और होती थी प्रभात फेरी। और जो लोग स्काउट और गाइड में काम करते थे बच्चे, उनका तो खैर उनकी तो बात ही क्या, तो वो लोग, उनकी अपनी अलग छटा होती थी, और हर सबके अपने ग्रुप्स के, हर एक स्कूल के लोग अपने अपने ग्रुप्स में, पूरे शहर में, छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे हम पढ़ते थे, वहाँ की सड़कों पे, गलियों में हम लोग नारा लगाते हुए, देश प्रेम का नारा लगाते हुए हम लोग घूमते थे, और फिर वहाँ पे इसके बाद हम लोग वापस मिलते थे अपने स्कूल में, और स्कूल में मिलते थे हम सबको लड्डू, वो लड्डू जो कि अब तक हमको याद है, हमारे हमारी स्मृतियों में सब कुछ बिल्कुल गोल हो जाती है, गोल लड्डू की तरह और मीठी लड्डू की तरह। हमारी यादें बचपन की भारत की इसी प्रकार से हैं मित्रों, लड्डू की तरह सुमधुर, मीठा और अपना स्वाद देर तक छोड़ने वाला। तो मित्रों ऐसे ही हमारा वतन भी है, हमारा जो जो हमारे रगों में खून बह रहा है और उसमें जो हमारा डीएनए है वो भी तो वतन का है, तो ऐसा प्रेम है मित्रों वतन का। तो हम मित्रों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं अपने हरिशंकर परसाई जी के बारे में। हरिशंकर परसाई एक ऐसा नाम है मित्रों जो हिंदी साहित्य में अनोखा है, व्यंग्य के नाम पे। व्यंग्य जैसी विधा बहुत मुश्किल होती है मित्रों, हमने आप सबने देखा होगा हमारे जीवन में कि जब हम कोई भी हास्य करते हैं, ह्यूमर जब हम करते हैं तो हम मोस्टली औरों पे करते हैं, और वो कभी कभी कटाक्ष का रूप ले लेता है, रौद्र रूप ले लेता है, कभी कभी किसी को बुरा लग जाता है, कभी कभी वो इतना हल्का होता है कि उसका पर्पस सॉल्व ही नहीं होता, अगला जो जिसके बारे में हम वो हास या व्यंग कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पाता, वो इतना हल्का होता है। व्यंग को एक तरह से बैलेंस कर पाना इस रूप में कि जिसके लिए व्यंग हो रहा है उसको बात समझ में भी आ जाए और उसको बुरी भी न लगे, इस विधा के ये पारंगत थे हरिशंकर परसाई। उनका व्यंग एक कुछ समझ लीजिए इस तरह से होता था, चुटकी, आपने किसी को चुटकी काटी, उसको दर्द नहीं हुआ बट उसको एहसास हुआ कि आपने कोई बात थोड़ी सी चुभो कर कही, उससे खून नहीं निकला, उससे उसको कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको जगा दिया, आपने अपना मैसेज, आपका जो कंटेंट था, पेलोड, वो आपने कन्वे कर दिया व्यंग के जरिए, जिससे उसमें हास्य का भी हल्का सा पुट होता है। तो व्यंग में जो पेलोड है उसका कंटेंट अगर उसके एनालिसिस की जाए तो उसमें शब्द जो हैं वो समझ लीजिए कि शब्दों को समझ लीजिए कि जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं, तो मान लीजिए आलू की पकौड़ी बन रही है, तो आलू आपका शब्द हो गया, ठीक है। अब उसको आपने बेसन का जो वो होता है मसाला, उसमें आपने उसको लपेटा, वो व्यंग है, जो आउटर कवरिंग है वो व्यंग है, लेकिन व्यंग के अंदर जो कोर मटेरियल है वो आलू है या प्याज है या पालक वो है, तो ऐसा ही व्यंग होता है। तो व्यंग जो है वो अगर आप समझ लें कि चटपटा पकौड़ी या समोसे की तरह होता है, ठीक है, तो अगर ऐसे हम व्यंग को समझें तो शायद व्यंग हमको एक तरह से एनालाइज भी हो जाए। तो चलिए उनसे बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद शहर में हुआ था, गांव था इनका जमनी, और गांव की वेशभूषा में इनके पिताजी शायद कृषक थे, खेती करते थे, और वहां से इन्होंने जीवन को बिल्कुल पास से देखा। मित्रों आपको ये भी जिक्र कर दें हम लोग यहाँ पर कि मध्य प्रदेश जो है वो हिंदी व्याकरण के लिए और शुद्ध अच्छी हिंदी लिखने और बोलने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रदेश हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ भी हिंदी काफ़ी प्रांजल रूप में बोली जाती है और लिखी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का अपना अलग स्थान है,
हिंदी भाषा के सहयोग और उसके उद्धार में। तो ऐसे अनोखे प्रदेश मध्य प्रदेश से, होशंगाबाद से हरिशंकर प्रसाई जी आते हैं, और इनको कमलेश्वर जी ने कहा था कि हिंदी व्यंग के शिखर पुरुष। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। एक रचना जो कि बहुत फेमस है, विकलांग श्राद्ध का दौर, विकलांग श्राद्ध का दौर, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। फिर इन्होंने बहुत सारे अपने कॉलम्स लिखे। एक इनमें बहुत फेमस कॉलम था, पूछिए परसाई से। तो लोग क्यू एंड ए करते थे और ये उसका उत्तर देते थे। ये उनका एक स्थायी स्तंभ था पत्रिकाओं में। एक पत्रिका इन्होंने शुरू की थी वसुधा राम से, लेकिन वो लेफ्ट उसकी लीनिंग थी, बहुत दिन वो चल नहीं पाई। तो ये इनकी छोटी सी एक झलक है। मित्रों, आपको सुनाते हैं हम हरिशंकर परसाई जी के व्यंग की एक छोटी सी झलक। तो कुछ ऐसा हुआ कि इनकी शब्द सुनिए आप, हाँ, व्यंग पे इन्होंने क्या लिखा है। एक छोटी सी रचना जिसका नाम है डॉक्टरेट की कथा। तो इसमें वो लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ कि फ्रांस में डॉक्टरेट बहुत सस्ती हो गई थी। कोई 500 फ्रैंक विश्वविद्यालयों को भेजते और अपने मनचाहे विषय पर जब चाहे डॉक्टरेट ले ले। तो एक बार क्या हुआ कि एक रईस ने 8-10 विषयों पे डॉक्टरेट ले ली, 8-10 विषयों पे। उसको लेने के बाद जब उसके पास 8-10 डॉक्टरेट हो गई, तो उसने सोचा कि वो, उसके पास एक घोड़ा था, वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था। तो उसने जो विश्वविद्यालय था उनको 500 फ्रैंक और भेजे और लिखा कि मेरे घोड़े डिक को भी एक डॉक्टरेट दे दी जाए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट जैसी भी थी, वो आगे गई विश्वविद्यालय के पास। तो विश्वविद्यालय के पास से एक जवाब आता है। अब आप जवाब सुनिए, विश्वविद्यालय बोलता है कि हम घोड़ों को डॉक्टरेट नहीं देते, हम सिर्फ गधों को डॉक्टरेट देते हैं। तो ये इनका व्यंग था हरिशंकर परसाई जी का, कभी तीखा, कभी स्पाइसी, कभी वेरी स्पाइसी, लेकिन ऑलवेज फुल ऑफ कंटेंट, जो कि जो रिसीवर है, सब्सक्राइबर है, वहाँ तक बात पहुंच जाती थी।

0: मित्रों, ये जो गाना था अभी आपने सुना, वो फिल्म प्यार का बंधन से लिया गया था और इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने और इसके लिरिक्स लिखे थे साहिल लुधियानवी जी ने।
1: जी मित्रों, तो हम हरिशंकर परसाई जी के साहित्य के बारे में, उनके व्यंग के बारे में बात कर रहे थे। मित्रों, इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही अनोखी हैं। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, उस पर उन्होंने मतलब व्यंग क्या जो एक सच्चाई है, कटु सच्चाई कि हमारे साहित्यकार कितने गरीब घरों से आते थे और उनके पास जूते भी नहीं होते थे, तो उस पर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक रोचक लेख लिखा था प्रेमचंद के फटे जूते। तो बहुत सारी इनकी ऐसी रचनाएं हैं। इनके कुछ वाक्य तो भाई कमाल के हैं। वो बोलते हैं, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, पर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। आपने देखा होगा हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, जिसको किसी ने ये भी कहा है इंग्लिश में कि द ट्रेजेडी विद द वर्ल्ड इज दैट द वाइज आर ऑलवेज फुल ऑफ डाउट बट द फूलिश पीपल आर कॉकश्योर। सो ये भी एक कटु सत्य है कि वाइल द फूल आर कॉकश्योर द वाइज आर ऑलवेज फुल ऑफ डाउट। तो इस पे इन्होंने लिखा, कितना अच्छा लिखा है कि मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। और एक और इनका वाक बड़ा हमको अच्छा लगता है, वो है, तारीफ करके आदमी से कोई भी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है। तारीफ करके आदमी से कोई भी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है। आप किसी की तारीफ कर दें, वो इतना खुश हो जाएगा कि वो उसके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। फिर आप उसको उनसे आप कोई भी अपना काम करा सकते हैं, या कोई भी बेवकूफ़ी इनके शब्दों में कराई जा सकती है। ऐसे ही इनका एक और देखिए, कितना डीप, कितना मतलब रोचक इनका ये सेंटेंस है। ये लिखते हैं, धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को निडर बनाता है। धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को बनाता है निडर। तो ये इनकी कुछ छोटी छोटी देखिए व्यंग्यात्मक फुलझड़ियाँ हैं, और आपको अगर मौका मिले तो इनकी आप जो रचनाएं हैं उनको पूरा पढ़ें। हरिशंकर परसाई जी, जो कि भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य में व्यंग के शिखर पुरुष माने जाते हैं, कमलेश्वर जी के शब्दों में, और सही ही है। जैसा कि हमने इनके शब्दों में देखा और इनके लेख में देखा, तो 22 अगस्त को हरिशंकर परसाई जी का जन्मदिवस, उनको हम याद करते हैं और उनको देते हैं श्रद्धांजलि।

मित्रों, ये सुना आपने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया था और इसको गाया था लता मंगेशकर जी ने। तो आपको तो मालूम ही है कि भारत में इस राष्ट्रीय गीत को पुनर्जीवित करने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न स्तरों पर, और इसको इस गाने को हमने इसीलिए आपके लिए स्पेशली चुना कि आप लता मंगेशकर जी की आवाज़ में इसके शब्द कितने मुखर होकर आते हैं। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, संस्कृत के शब्द, और इनको कुछ कुछ बंगाली टोन में गाया गया है, बहुत ही सुंदर। तो मित्रों, ये आज का कार्यक्रम हमारा गीतांजलि, जो कि रेडियो 3ZZZ पर चल रहा है, और कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं हम दीप्तिमान और मेरे साथ शारदा। और रेडियो 3ZZZ के माध्यम से पूरे विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन सब के कार्यक्रम, उन ऑलमोस्ट सभी के कार्यक्रम रेडियो 3ZZZ पर चलते हैं 92.3 FM पर, और आप ज़रूर सुने जिस भी भाषा में आपका मन करे, हिंदी भाषा को सुने ही, और आपकी और भी कोई भाषा में इंटरेस्ट हो तो उस पर भी कार्यक्रम सुने रेडियो 3ZZZ। मित्रों, हम आपको एक और छोटा सा एक संगीत का एक सेगमेंट आपको हम चाहते हैं सुनाना। आपको मालूम है कि मेलबर्न के सांस्कृतिक मंच पर नवल मुद्गल काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं बहुत दिनों से संगीत के क्षेत्र में, और इन्होंने अभी हाल ही में राखी पर एक बहुत ही सुंदर गाना कंपोज किया है और खुद गाया है। तो चलिए सुनते हैं नवल मुद्गल की आवाज़ में राखी पर ये गाना।

जी मित्रों, ये गाना था बहुत ही सुंदर, नवल मुद्गल जी की आवाज़ में, और राखी का पर्व आने वाला है, और देखिए बहनों के और भाइयों के प्यार के ऊपर कितना सुंदर इन्होंने गीत रचा है। नवल मुद्गल काफ़ी अनोखे कलाकार हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये संगीत के क्षेत्र में। तो नवल मुद्गल को बधाई एक और अच्छे से गाने को हम सब लोगों के सामने लाने के लिए। मित्रों, इस समय मेलबर्न में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जो कि 17वां एडिशन है और ये 13 से 23 अगस्त तक चलेगा, और इसमें बहुत सारे भारत से सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, स्टार्स। रेखा जी आई हैं, रानी मुखर्जी, पंकज त्रिपाठी, ऋषभ शेट्टी, और कुछ और नाम जैसे हैं मलाइका अरोड़ा, और थोड़े से नए से नाम हमको लग रहे हैं लेकिन आपको शायद मालूम होगा, डॉली सिंह, कीर्ति कुल्हारी, विजय वर्मा, मानुषी छिल्लर, तो बहुत सारे नाम हैं, और दुलकर सलमान, बहुत सारे नाम हैं। आपको जैसे ही मौका मिले आप ज़रूर इनसे मिलने का, इनसे रूबरू होने का अपना अवसर लीजिए, और भारत की जो फिल्में यहाँ पे चल रही हैं आप उनको ध्यान से देखिए। तो ये एक बहुत अच्छी इवेंट चल रही है मेलबर्न में, और अभी हाल मसाज के नाम से राकेश बेदी जी, मसाज इनका एक वो है, मसाज के नाम से इनका इनकी इवेंट होने वाली है, आई थिंक हास्य से भरी होगी। तो साथ में एकम्पनिंग आर्टिस्ट हैं मेलबर्न की सिंगर प्राची गेंदर, हास्य से भरी राकेश बेदी जी की, वो भी आ रहे हैं मेलबर्न में, तो आप उनका भी कार्यक्रम जरूर देखिए। तो ये है कुछ स्थानीय सूचनाएं। तो मेलबर्न का जो साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है वो काफ़ी गुलजार है इस समय, और ठंड तो बहुत है मित्रों, लेकिन आप घरों में ना रहें, बाहर निकलें और फिल्मों का और हास्य व्यंग का लुत्फ उठाएं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। और इसके अलावा मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना, जो कि हमारी एक बहुत ही बहुत दिनों से हमारी एक जो श्रोता हैं मंजुला जी, उन्होंने फरमाइश की है, उनका उनकी फरमाइश है, चुरा लिया है तुमने जो दिल, तो सुनते हैं मंजुला जी ये गाना आपके लिए, चुरा लिया है तुमने जो दिल।

मित्रों, इसको सुनकर तो हमारी यादें सारी ताज़ा हो गई होंगी, हमारी यूनिवर्सिटी की, हमारे कॉलेज की, हमारे स्कूलों की, क्योंकि ये फिल्म थी यादों की बारात, जो कि बहुत ही अनोखी फिल्म थी। और इसमें आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी जी की, मजरूह सुल्तानपुरी जी के शब्द थे, और संगीत था आर डी बर्मन जी का। यू कुड हैव ऑलरेडी मेड आउट उनके जो इनका सिग्नेचर म्यूज़िक होता है, मज़ेदार, धमाकेदार और सीधे जो जवान लोग हैं उनके दिलों की धड़कनों तक तुरंत पहुंचता है। तो मित्रों, ये था सुंदर सा गाना फिल्म यादों की बारात से। मंजुला जी, आशा है कि आपको आपकी फरमाइश का ये गाना पसंद आया होगा। इसी प्रकार से फरमाइश करते रहिए। आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। आप लोगों के विचार आ रहे हैं, कई लोग हमें बता रहे हैं हरिशंकर परसाई जी के, उनके अपने संस्मरण भारत से, जो जो लोग मध्य प्रदेश के हैं उनको उनको उनके अपने संस्मरण हैं उनके परिवार से। तो मित्रों, काफ़ी अच्छा लग रहा है मिलकर। और चलिए आगे सुनते हैं एक और गाना, वतन के ऊपर।

0: मित्रों, आज का पंचांग 22 अगस्त 2026 श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी, सिद्धार्थ संवत्सर, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, श्रावण मास दशमी तिथि है और नक्षत्र है ज्येष्ठ। आज 7:19 तक रात में रहा था, उसके उपरांत मूल और वैधृति योग है, सुबह 9:48 तक थी और उसके बाद विषकुंभ योग रखेगा। करण है तैतिल, 5:18 तक था, उसके बाद गर 6:30 तक सुबह तक है, उसके बाद वाणिज्य करण है। तो ये आज का था पंचांग। तो सुनिए गुलजार जी के कुछ शब्द अंत में। जरा सा बीज उठा ले तो पेड़ देती है, जरा सा बीज उठा ले तो पेड़ देती है, जमी सा दूसरा कोई सखा कहाँ होगा।
1: श्रोताओं, आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। मैं शारदा
0: और मैं दीप्तिमान,

0: प्रतिभा संपन्न कविया प्रतिभापूर्ण समाज शोधकया प्रतिभापूर्ण गीत रचकया प्रमुखन सिद्धार्थ हुआ उन्हांसे के वियोग लांकीय भिक्षु संस्था वगैरह रसभावपूर्ण शांत रस करुणा रस अपेक्षित रसिकयाट बरपतल पाडुवा नमो उपदिन सियल नियायुतु एक तमाई लोक सनातन धाम उन्हांसे ते धामट अवनतुना उन्हांसे ते अजरामर अमूर्त महा निर्वाण संपत्तिये प्रार्थना करनो सिर दिनाटम तेरवन सरणाय
1: अभी उपहार से पिंदी में समुगन्ना में मोहते